श्रीमन नित्य निकुंज विहारिणे नमः। श्री बिहारी बिहारिणी जो जयति, श्री स्वामी हरिदासो विजयते तराम। ब्रजमंडल की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो हमारी श्यामाजू श्री राधा रानी हैं। जो ब्रजमंडल 84 कोस में फैला हुआ है, जिसमें कि श्री राधा रानी का हृदय स्वरूप हमारा श्रीधाम वृंदावन है, तो आइए मेरे साथ मिलकर युगल छवि का ध्यान करते हुए और श्री राधा नाम का आश्रय लेकर ब्रजमंडल के प्रमुख स्थानों का नाम लेते हुए श्रीधाम वृंदावन से अपनी यात्रा को प्रारंभ करिए। और मेरा विश्वास है कि इस मानसिक ब्रज यात्रा से आपको वास्तविक ब्रज की यात्रा करने का ही फल मिलेगा।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में सुबह के 7 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 7 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 8 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

हमने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया, अब अगर तुमने बेवफाई की तो खुदा कसम हम इन्हीं लहरों में डूब मरेंगे।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to रेडियो गाना and it's 9 AM in India. Keep listening to रेडियो गाना. Thank you.

लोग मुझे क्यों देते हैं ताना, हाँ मैं हूँ बीवी का दीवाना। अरे तो क्या हुआ।

0: और नहीं कुछ।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 10 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: शिव मंदिर है। कहते हैं वहां जाकर सच्चे दिल से जो भी मुराद मांगो वो पूरी हो जाती है। किसी दिन ले जाऊंगा वहां, भगवान से मांग लूंगा तुम्हें।
1: सच?

बिन एक दिन ऐसे बीता जैसे उमरिया बीती, सब कुछ भूल जाना आसान है, सब

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 11 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 12 नून इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: बीच में क्यों रोक दी?
1: तुम्हारा साथ ज्यादा ज्यादा बहुत ज्यादा देर रहने के लिए।
0: ओ माय गॉड, मेरी तो हिंदी कविता की क्लास है।
1: हिंदी कविता है ना?
0: हाँ।
1: वो मैं तुमको टीच करता हूं।
0: तुम और हिंदी कविता?
1: तुम समझता मैं हिंदी कविता नहीं जानता? मेरे जीवन साथी प्यार किए जा, जवानी दीवानी खूबसूरत जिद्दी दी पड़ोसन, सत्यम शिवम सुंदरम बेनहर। वो इंग्लिश।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 1 PM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: तुम लोग हंस क्यों रहे हो?
1: हंस नहीं रहे दोस्त, रो रहे हैं तुम्हारी अकल पे और हम सबकी बेखूफी पर। एक दीवाने ने ख्वाब देखा जंगल में और उसकी तस्दीक के लिए हम सब दीवाने तुम्हारे दरबार में पहुंच गए।
0: ये दीवानगी नहीं, हकीकत है। मैंने अपनी आंखों से उन दो इंसानों को सांप बनते हुए देखा है। विजय, पहले तो तुम्हारी सिर्फ दिमाग पे शक था, अब मालूम होता है कि तुम्हारी आंखें भी जा रही हैं।
2: हम ये कैसे मान सकते हैं यार कि एक सांप जब चाहे इंसान का रूप धारण कर ले और जब जी में आए फिर से सांप बन जाए।
3: मैं तो कहता हूँ ये तुम्हारे दिमाग का फतूर है और कुछ नहीं।
1: मुझे तो सोचकर भी हंसी आती है यार।
0: चंद साल पहले तुम्हारे जैसे लोग चांद पर जाने वालों पर ऐसे ही हंसा करते थे।
4: ओ फिलोसोफर साहब, आप अपनी फिलॉसफी से सच को झूठ में नहीं बदल सकते।
0: अरे भाई, ये इच्छाधारी सांप सदियों से है और जो बात सदियों से सच है वो आज भी सच है, समझे?

0: गोली किसने चलाई?
1: मैंने।
0: क्यों?
1: अगर मैं गोली नहीं चलाता तो नाग उस लड़की को डस लेता।
0: वो लड़की नहीं है बेवकूफ, वो नागिन है, और जिस नाग पर तुमने गोली चलाई है उसे मैं इंसान के रूप में देख चुका हूँ, उससे बातें कर चुका हूँ।
2: लेकिन अब क्या करूँ, पिस्तौल से निकली हुई गोली वापस तो नहीं आ सकती?
0: जिस तरह पिस्तौल की गोली वापस नहीं आ सकती, इसी तरह नागिन का बदला कभी टल नहीं सकता। कहते हैं मरने वाले नाग की आंख में मारने वाले की तस्वीर रह जाती है, और नागिन उस वक्त तक चैन से नहीं बैठती जब तक वो खून का बदला न चुका ले।
3: तो अब क्या किया जाए?
0: किरण के बचने की सिर्फ एक ही सूरत है, हमें फौरन उस नाग को ढूंढ के जमीन में दबा देना चाहिए ताकि वो नागिन अपने नाग की आंख में इसकी तस्वीर न देख सके।
3: लेट्स सर्च।
0: हाँ चलो। चलिए
4: हे, अरे हे सूरदास का औलाद, तो अगर सुनाई नहीं पड़ा था हम कहाँ कहाँ थे, हम कहाँ ठहरा करने को कहा गया गया?
5: हम ये बकवास सुनने नहीं आए हैं, हम यहाँ के राजा हैं और अब हम लौट कर आए हैं, हम राजा की तरह रहेंगे।
4: अरे हाई देखो इकालिया गैंडा के, राजा की तरह रहेंगे यानी अब हम तहार पर जा की तरह रहिए।
6: गोविंदा?
4: अरे गोविंदा नहीं जी, हवलदार बोलिए आप।
6: हवलदार साहब, लगता है दो डंडे देने ही पड़ेंगे।
4: हाँ ऐसा कहा?
7: हाँ दे दीजिए।
4: अरे रजवा का औलाद, इन्हें आओ रे, पुलिस का भाका नहीं समझता है क्या रे? हम पुलिस वालन का हंसना मना है, चलिए। अरे बगुआ
6: गोविंदा,
4: और हम तो के हुकुम देते हैं ईद दारू का अड्डा बंद कर दे।
6: मगर दारोगा जी, हम दिन भर तो हर ड्यूटी बजाई मगर रात को ये धंधा
4: बंद। खड़ा करो, बंद। हम कह दिया सो कह दिया, अरे दिन का बात नहीं है रात का बात नहीं है, शराब पीना बुरी बात है तो शराब बंद का
6: बंद। लेकिन गोविंदा, नहीं नहीं नहीं हवलदार, नहीं नहीं नहीं दरोगा साहब, कल तो शिवरात्रि का दिन है।
4: अब अरे शिवरात्रि के दिन का बात हम कहाँ कहा थे, अरे कल तो छुट्टी का दिन होते हैं, भांग पिया जाते है, का पिया जाते है।
8: जो चिराग हमने जलाए वही चिराग हमारा घर जलाने की कोशिश कर रहे हैं।
9: इससे पहले कि चिराग एक भड़कती आग बन जाए उसे बुझा देना ही शुभ नीति है।
8: जरा हम भी तो देखें उनकी लौ में कितनी गर्मी है।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 2 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 4 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 5 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 5 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

बंधुओं बजाइए ढोल और बजाइए बाजा।

हाँ तो सज्जनों सुनो सहेलियों की कहानी। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, हाँ, अरे अरे

आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार थीम चॉइस शो आरजे अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार ऑफ द वीक में सुनिए दिए गए स्टार मेहमान पर आधारित गाने। आप मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश कर सकते हैं सिर्फ रेडियो हॉटस्टार की ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।

हाय हेलो नमस्ते गुड इवनिंग सत श्री अकाल राधे राधे अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमन। आ चुका हूं लेकर आज का बहुत ही प्यारा प्रोग्राम जिसका नाम है स्टार थीम चॉइस। और आज के जो थीम के शब्द हैं वो मैं इन्हें एक हफ्ते पहले बता दिए थे, जो बिंदिया, काजल, झुमका, चूड़ी, मेहंदी, पायल और कंगना, अंगूठी, चुनरी, दुपट्टा है। अगले हफ्ते की थीम क्या होगी ये सब आप मुझे राय करके बताएंगे। फिलहाल मेरे पसंद गाने एंजॉय कीजिए और आते हैं इस गाने के बाद आप सभी का वेलकम करने।

0: आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार थीम चॉइस शो आरजे अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार ऑफ द वीक में सुनिए दिए गए स्टार मेहमान पर आधारित गाने। आप मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश कर सकते हैं सिर्फ रेडियो हॉटस्टार की ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।
1: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बना दे। और यानी कल के हमारे स्टार हैं ऋषि कपूर जी, बिल्कुल उनके पसंद के मतलब उन पर फिल्माए हुए गाने प्ले होंगे। तो उन पर फिल्माए हुए आप अपने पसंद के गाने की डिमांड कल करेंगे, बिल्कुल एक से बढ़कर एक गाने की। फिलहाल मुझसे जुड़ चुके हैं बहुत से दोस्त, सभी का वेलकम करते हैं। सबसे पहले जुड़ने वाले हमेशा की तरह हमारे सरफू भाई सरफराज पटेल साउथ अफ्रीका से जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं। साथ ही साथ हमारे अशोक देशमुख जी जुड़ चुके हैं, तो आपका भी वेलकम करते हैं। और एम ताहिर जी जुड़ चुके हैं, आपका भी वेलकम है एम ताहिर जी। और जुड़ने वाले दोस्तों में शामिल है हमारे आरिफ सिंधे जी, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत वेलकम है गांधीनगर गुजरात से। और सर्वजीत सेठी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और हुकुम चंद जांगड़ जी जुड़ चुके हैं, आपका भी वेलकम है हुकुम चंद जांगड़ जी। और आत्माराम पाटिल जी जुड़ चुके हैं, आपका भी वेलकम करते हैं आत्माराम पाटिल जी। और अंगद मिसाल जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं मिसाल अंगद जी। और सुनीता गोप जी जुड़ चुकी हैं, आपका भी वेलकम है सरायकेला झारखंड से। और मुबारक हुसैन जी भाई, मुबारक को आप जुड़ गए हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। ज्योति खटवड़े जी जुड़ चुकी हैं, आपका भी वेलकम करते हैं। और बाबूलाल अंजना जी जुड़ चुके हैं, आपका भी वेलकम है। और सर्वेश भगत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। साथ ही साथ निशांत राय बोले जी, आपका भी मैं वेलकम करता हूँ। और बबीता जी, आपका भी वेलकम है। और बीरबल बघेल जी, बहुत बहुत वेलकम है। और गजानन सलोकार जी, वेलकम करते हैं आपका भी। और काजल झक्का जी, आपका भी वेलकम है। साथ ही साथ काजल झक्का जी जुड़ के साथ साथ यहाँ पे जाकिर खान जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है आपका भी। दीपक कुमार गायकवाड़ जी जुड़ चुके हैं, आपका भी वेलकम करते हैं। और अनिल कश्यप जी जुड़ चुके हैं, आपका भी वेलकम है। और खुशबू जी, बहुत बहुत वेलकम है खुशबू, आपका भी। और सभी दोस्तों का, जितने भी लोग इन चोरी चोरी चुपके चुपके सुनते हैं, सभी का वेलकम करते हैं। आज का पहला डिमांड आमना खान जी के साथ चलते हैं, एंजॉय कीजिए।

0: मान लो वैसे फीडबैक और गाना बहुत अच्छा था, फीडबैक बहुत सारे हुए हैं मेरे पास और दत्ता कलम जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और मीना जी, मीना इब्राहिम जी जुड़ चुके हैं यूएस से, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी, सभी को गुड इवनिंग कह रही हैं। विष्णु चंद्र जी जुड़ चुके हैं, आपका भी वेलकम है, करेंगे सभी सुनते, मैं सभी से कहूँगा सुनते रहे रेडियो ऑडियो दीवाना बना दे। अजय कुछ जी जुड़ चुके हैं, आपका भी वेलकम करते हैं। अजय कुछ जी और सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं सुनते हैं।
1: अजय अमन सर जी शुभ संध्या, नमस्कार, नमस्ते जी। अमना खान जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर
0: जी। और अभिषेक तिवारी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं अभिषेक तिवारी जी। और काजल झक्का जी डांसिंग के साथ कह रही, गाना बहुत ही प्यारा लगा है। ओके जी, वीरबल भगत जी लिखते हैं कि आमना खान जी का शानदार पसंद है जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और गजानंद जी लिखते हैं कि आमना खान जी के पसंद बोले चूड़िया बोले कंगना, बेहतरीन लाजवाब, कभी खुशी कभी गम से। आरिफ सिंधी जी लिखते हैं कि आमना खान जी बहुत ही प्यारी डिमांड है आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया इस गाने को सुनवाने के लिए। और ये क्या कहते हैं, इनकी भी सुनते हैं।
2: आरजे अमन सर नमस्कार, मैं अपने चाचा अनिल कश्यप के साथ, मैं उनका भतीजा बोल रहा हूँ, उनके साथ रेडियो हॉट स्टार सुन रहा हूँ। मेरे और मेरे चाचा की तरफ से आपको नमस्कार।
0: नमस्कार, आपका नाम क्या है ये तो आपने बताया नहीं। और यहाँ आमना जी लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम आरजे अमन जी, और बहुत बहुत शुक्रिया मेरा गाना प्ले करने के लिए। वालेकुम अस्सलाम। और लिखते हैं कि सभी दोस्तों का भी शुक्रिया फीडबैक देने के लिए। इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो काजल झक्का जी का है, सुनना चाहते हैं। ये लिखते हैं कि नमस्ते गुड इवनिंग सभी दोस्तों को, नमस्ते गुड इवनिंग, मैं काजल सीतामढ़ी बिहार से, आज मैं गाना सुनना चाहती हूँ स्पेशली अपने मिठू मियाँ जी के लिए और सभी को डेडिकेट करना चाहती हूँ, तो सुनवा दें, इंजॉय कीजिए काजल झक्का जी। और ये गाना सच में मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ये गाना मैंने सुनता था कि मुरा जी को भी बहुत पसंद है।

0: और कल सुबह 9 बजे स्पेशल रिक्वेस्ट सुनना ना भूलेंगे। ओके, और फिलहाल मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आए हुए हैं और निशांत भाई बोले लिखते हैं कि बहुत ही बढ़िया गाना है, बहुत ही प्यारा गाना है। जी जी, वो तो मुझे पता है। और अशोक देशमुख जी लिखते हैं कि काजल झक्का जी का पसंद शानदार लगी है और धन्यवाद देते हैं गीत में शामिल करने के लिए। और बीरबल बघेल जी लिखते हैं कि काजल जी का पसंद बहुत खूबसूरत लगी है। जी बिल्कुल। और आमना खान जी लिखते हैं कि ओके बिल्कुल, वो मैंने ऑलरेडी कर दिया है। और गजानंद जी लिखते हैं कि काजल झक्का जी का पसंद एकदम झक्कास, बेहतरीन, लाजवाब, मजा आ गया सुन के। मिशारंगा जी क्या कहते हैं, किस सुनते हैं?
1: हेलो अमन सर,
0: बोलिए।
1: मैं मिसाल अंगद बीड महाराष्ट्र से आपके लाइव कार्यक्रम में फीडबैक दे रहा हूँ। और अमन सर जी, आज के जो थीम चॉइस के शब्द है, सभी शब्द बहुत अच्छे हैं। जिसने भी ये शब्द आपको दिए हैं तो मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करूँगा, बहुत अच्छे शब्द है। और अमन सर जी, रेडियो हॉटस्टार का नया ऐप अपडेट आया है तो मैंने आज सुबह ही कर दिया है, तब से ऐप बहुत अच्छा और एकदम डॉल्बी सिस्टम की आवाज़ आ रही है। मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत अच्छी तरह से आवाज़ आ रही है। और अमन सर जी, सॉन्ग रिक्वेस्ट के माध्यम से मैंने मेरा भी गाना आपको भेज दिया है। अमन सर जी, गाना आज मेरा आप ज़रूर सुनवाना। और अभी तक जो गाने हुए हैं मैंने सभी गाने सुने हैं और बहुत अच्छे हैं, धन्यवाद।
0: ओके जी, वेलकम। और ये फीडबैक सुन लेते हैं क्या कहते हैं।
2: नमस्ते अमन सर जी, मैं अनिल कश्यप सिवान बिहार से आपका प्रोग्राम सुन रहा हूं। और अभी जो गाना चल रहा है, हमारी छोटी बहन और चुलबुली सी प्यारी सी काजल झक्कास जी का गाना, बहुत बहुत बधाई उनको इस गाने के लिए। और बहुत आपको भी बधाई, धन्यवाद भी आपको इस सॉन्ग को प्ले करने के लिए। थैंक यू भैया।
0: ओके वेलकम जी, आपका भी। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि ये डिमांड बहुत ही अच्छा लगा काजल झक्का जी का। और पूजा भास्कर जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और ओके, और यहाँ पे मीना जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा डिमांड है। जी बिल्कुल। और बागेश्वर निशा जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। तो अगला जो डिमांड है मीना इब्राहिम जी का ही है और ये सुनना चाहती हैं फिल्म चीता का, ये तेरा सजना सवरना बिन

0: बहुत वेलकम करते हैं, लिखते हैं कि बेहतरीन सॉन्ग है जी, बिल्कुल। और मीना जी लिखते हैं कि मेरी रिक्वेस्ट को प्ले करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि अमन सर जी मुझे अच्छा गाना खूबसूरत चल रहा है, ओके धन्यवाद देते हैं आपका भी। कुलता बेनर जी दिल्ली से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी, और सभी को नमस्ते नमस्कार करिए। और ये फिर मैं
1: ये तेरा सजना संवरना बिन साजन के बेकार है, एक बहुत ही अच्छा सॉन्ग, और जिनका फरमाइश है उनको तो मैं एक पार्टी देने का विचार कर रहे हैं उनके लिए। और साथ में हमारा जो घर का बच्चा है, भतीजा है, ओम नाम है उसका, आप पूछ रहे थे भी
0: जी, ओम नाम और वो भी है साथ में,
1: और बोल रहा है कि पढ़ेंगे नहीं अभी, थोड़ा सा इंजॉय करेंगे। तो बोले कि चलो भाई ठीक है, थोड़ा सा सुन लो, उसके बाद से जाओ तू पढ़ाई कर अपना।
0: अच्छी बात है, चलिए बहुत बहुत बहुत अच्छा लगा है। और अगला जो डिमांड है मैं प्ले करने वाला हूँ नीतू शरण जी का, सुना चाहती हैं, ना कजरे की धार ना मोतियों की हार, ना कोई किया सिंगार फिर भी इतनी सुंदर हो, ये सुंदरता की मुरत जो है ना, इसलिए

0: बिल्कुल ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी तुम कितनी सुंदर हो, कितनी सुंदर हो, कितनी सुंदर हो, कितनी प्यारी हो जी, है ना। और गजानन सरकार जी लिखते हैं कि नीतू शरण जी की पसंद बहुत बेहतरीन लगी है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उनको। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि बहुत मस्त आनंद आ गया, बिल्कुल कोई चिंता की बात नहीं, जबरदस्त गाना चल रहा है, मजा आ रहा है सुनकर। गीता शरण जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार गाना है जी, बिल्कुल। और मीना जी लिखते हैं कि बहुत खूबसूरत और शानदार बेमिसाल गाना है जी, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए भी। और काजल झक्का जी लिखते हैं कि ये भी गाना मुझे बहुत ही प्यारा लगा है। और नीतू शरण जी लिखते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद मेरा पसंद के गाने को सुनवाने के लिए। बीरबल बघेल जी लिखते हैं कि गाना बहुत ही सुंदर है जी, थैंक यू सो मच। और बाबूलाल अंजना लिखते हैं कि नीतू जी का डिमांड बहुत ही प्यारी है जी। और निशांत राय बोए लिखते हैं कि बहुत लाजवाब गाना है। और मंगेश देशमुख जी कहते हैं कि मैं भी जुड़ गया हूँ, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और ये फीडबैक
1: ना कजरे

0: तुम कितनी सुंदर हो। काफ़ी प्यारा सॉन्ग है और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको बजाने के लिए। और एक बात पूछना था कि मोर ऑप्शन पे एक शाउट आउट का ऑप्शन आ रहा है, तो वो क्या होता है, उसमें क्या किया जाता
1: वो
0: है?
1: वो क्या होता है उसमें क्या किया जाता है? जी बिल्कुल बता दें, अगर यानी किसी का बर्थडे हो, यानी जन्मदिन हो, या कोई एनिवर्सरी हो, या कोई भी फंक्शन हो, कोई भी फेस्टिवल हो, उसकी बधाइयां आप सभी को देना चाहते हैं तो वहां से दे सकते हैं। जब आप वहां पे मतलब शट आउट कीजिएगा उनके नाम से, तो मैं जब उसको यहाँ से अप्रूव कर दूंगा तो वो सभी को दिखने लगता है। वो वहाँ पे जब तक मैं अप्रूव नहीं करूंगा तब तक नहीं दिखेगा। अप्रूव करने के बाद वो शो करने लगेगा हाँ कि फला फला ने, अगर मैं चाहूँ तो रिजेक्ट भी कर सकता हूँ। अगर किसी का मैसेज सही नहीं लगा तो मैं उसको रिजेक्ट कर दूंगा तो वो नहीं दिखेगा। जब अप्रूव कर दूंगा तो सबको दिखने लगेगा हाँ फला फला ने आपको विश किया है। धन्यवाद देते हैं, आपने अच्छी जानकारी मांगी। अगला जो डिमांड है मेरे दो दोस्तों का है, एक हमारे एम ताहिर जी का है। एम ताहिर जी के साथ साथ एक साहब और भी हैं, बागेश्वर निषादित शायद हैं, दो दोस्त हैं और एक ही गाना सुनना चाहते हैं कि तेरी बिंदिया उड़ा के ले गई मेरी निंदिया, मैं जाग रहा था।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार, जो आपको दीवाना बना दे। बहुत सारे फीडबैक मेरे पास आ चुका है। शिल्पा बेंजी लिखते हैं कि हम भी जुड़ गए हैं। अच्छा, तो बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और निशांत अभय लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग चल रहा है। अच्छा जी। और नंदलाल जी लिखते हैं कि नमस्ते मनसा जी, मैं भी गाजीपुर उत्तर प्रदेश से जुड़ चुका हूँ, तो बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और बीरबल बघेल जी लिखते हैं कि वाह भाई वाह, क्या पसंद है। बहुत सभी भाइयों के पसंद खूबसूरत खूबसूरत खूबसूरत है। और काजल झका जी लिखते हैं बहुत ही प्यारा गाना है, डिमांड बहुत ही शानदार चल रहा है, मजा आ रहा है। रेनबो लबर जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। रेनबो लबर जी लिखते हैं कि गुड इवनिंग अमन बाबू, गुड इवनिंग। लिखते हैं कि हाउ आर यू, आई एम जस्ट फाइन, व्हाट अबाउट यू भैया। एंड लिखते हैं कि द प्रोग्राम इज गोइंग वेरी वेल। अच्छा, थैंक यू सो मच। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू लिसन ए सॉन्ग, इट इज भोजपुरी सॉन्ग, लिज राजा पायल उतार द आवाज का। अच्छा, उधर भेज दीजिए मुझे सॉन्ग रिक्वेस्ट के माध्यम से, मैं यहाँ भूल जाऊंगा ना। खेसाई लाल की आवाज में है, ठीक है, ओके। थैंक यू सो मच भाई। हमारे यानी कि रेनबो लवर जी और हमारे यानी कि कुंता बेनी जी लिखते हैं कि दोनों दोस्तों की मिली जुली पसंद, डिमांड बहुत ही शानदार लगी है, धन्यवाद देते हैं उनको। और ये फीडबैक सुन लेते हैं।
1: अब ये तो जाहिर सी बात है कि जिसको बिंदिया दिखेगा वही ना निंदिया हराम करेगा, नहीं तो बाकी लोग तो सोएंगे ही ना। तो गाना तो अच्छा है, बट जो फरमाइश किए हैं वो देखते रहे बिंदिया, बाकी हम लोग सो रहे हैं। मतलब अमन सर का शो सुनने के बाद ही सोएंगे, अभी तो जगना ही है।
0: अच्छा जी।
1: और आनंद लेना है इस प्रोग्राम का।
0: धन्यवाद देते हैं आपको भी। और इसी बात में ज्योति खड़बड़े जी लिखते हैं कि सभी सॉन्ग्स बहुत लाजवाब चल रहे हैं। और अमना खान जी लिखते हैं गाने बहुत ही फंटास्टिंग और आज की थीम भी बहुत ही फंटास्टिंग है जी, थैंक यू सो मच। और मीना जी लिखते हैं वाह क्या बात है, बहुत खूबसूरत लाजवाब सॉन्ग सुनकर मजा आ गया है। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि दोनों दोस्तों की डिमांड बहुत ही प्यारी लगी। इसी बात पर अगला जो डिमांड है कुंता बेनी जी की है, और कुंता बेनी जी के साथ साथ पता ना और किनका किनका है, मैं बाद में देखूंगा, फिलहाल गाना में मैं प्ले कर रहा हूँ। कुंता बेनी जी के साथ देखते हैं और किन किन दोस्तों का इसमें डिमांड आया हुआ।

0: बिल्कुल तेरी चुनरिया दिल ले गई। विष्णु जी लिखते हैं कि ये वाला गाना भी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए भी। और बबीता जी क्या कहती है सुनते हैं।
1: नमस्ते अमन सर जी, आज का थीम इतना प्यारा दिए हो आप कि पहनते ओढ़ते सिंगार करते करते तो थक जाएगा इंसान, लेकिन पूरा नहीं हो पाएगा। बहुत अच्छा थीम दिए हो आपने और इतने अच्छे अच्छे गाने भी चल रहे हैं, सब दोस्त को धन्यवाद।
0: धन्यवाद देते हैं आपको भी फीडबैक देने के लिए। और शिल्पा बहन जी लिखेंगे तेरी चुनरिया दिल ले गई, बहुत बढ़िया गाना है, सच में दिल खुश हो गया है। और सर्वेश भगत जी क्या करते हैं।
2: आरजे अमन सर जी, कुंता बेनी जी अपने गाने में शामिल किए हैं, और सभी भाई और सभी बहन अपने अपने गाने में शामिल किए हैं, सभी को भी धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सर,
0: वेलकम जी आपका भी। और आप लोग इधर भेजे हैं ना, यानी कि मैसेज में तो मैं भूल जाऊंगा, तो एक बार याद दिलाइएगा अपने गाने के लिए। आदित्य सिंह जी लिखते हैं कि कुंता बेनी जी की डिमांड बहुत ही प्यारी है। और काजल झक्का जी लिखते हैं कि गाना बहुत ही प्यारा लग रहा है, लाजवाब लग रहा है, एकदम मजा आ रहा है सुन सुन के। बागेश्वर निषाद जी लिखते हैं मुझे थैंक यू टू ऑल फ्रेंड्स, ओके जी। और अनिल कश्यप जी क्या कहते हैं सुनते हैं।
3: रेनबो लवर जी आए हैं, उनका बहुत बहुत वेलकम है। और ये आते ही आपने क्या धमाल मचा दिया, और आपने कमाल का गाना फरमाइश कर दिया है। मुझे तो पता ही नहीं था कि भोजपुरी भी फरमाइश किया जा सकता है, बट कोई बात नहीं, हमने हिंदी गाने का ही फरमाइश किया है, और उम्मीद है बहुत जल्द बच जाएगा मेरा गाना।
0: ओके जी। और यहाँ पे बाबूलाल जी लिखते हैं कि गाना बहुत अच्छा था, थैंक यू सो मच कुंता बेनी जी। और ये फीडबैक सुन लेते हैं क्या कहते हैं।
4: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम।
4: बहुत ही बेहतरीन गाना, मज़ेदार एकदम डांसिंग सॉन्ग था ये, बोले मेरा कंगना, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ओके जी। और अकुंता बेनी जी लिखते हैं थैंक यू सो मच अमन जी गाना प्ले करने के लिए, दोस्तों का भी धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। अगला जो डिमांड है दो दोस्तों की है, यानी बीरबल बघेल जी और नीलेश बिरोकार जी, सुना चाहते हैं दुपट्टा सरक रहा है जी, बिल्कुल इंजॉय कीजिए।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे। बहुत सारे फीडबैक आ चुके हैं मेरे पास और सबसे पहले तो सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं इनके सुनते हैं।
1: जय अमन सर जी, बीरबल बघेल जी और एक भाई और भी हैं, दोनों भाई का मिली जुली फरमाइश शामिल किए, दोनों भाई को धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: शायद इस गाने में यानी बीरबल बघेल ही थे शायद, और कोई तो शायद नहीं था मेरे ख्याल से। और काजल झका जी लिखते हैं गाना, बहुत ही प्यारा था। और राहुल पासी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं राहुल पासी जी। और मीना जी लिखते हैं ऑसम सॉन्ग है, बहुत ही प्यारी डिमांड है। और प्रमोद कुमार जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है, लिखते हैं कि सुपर सॉन्ग सुपर डिमांड, मजा आ गया सुन के इस गाने को। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि कहीं हो ना जाए मोहब्बत किसी से, क्योंकि दुपट्टा सरक रहा है और मेरा दिल मचल रहा है, ये क्या कहते हैं इनके सुनते हैं।

0: धड़क रहा है।
1: मजा आ गया,
0: बहुत ही बढ़िया गाना। और इसको इंग्लिश में बोला जाए तो स्कार्फ इज स्लाइडिंग माय हार्ट इज थंकिंग, वेरी वेरी नाइस सॉन्ग सर।
1: क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है अनिल कश्यप जी। और कुंता जी लिखते हैं कि शानदार डिमांड लगी है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हमारे एमडी फैज आलम जी क्या कहते हैं सुनते हैं।
2: वाह, ये गाना भी जबरदस्त लगा, धड़कनों में क्यों हलचल है, बहुत खूबसूरत लाइन, ये मजा आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद एमडी फैज आलम
1: जी, वेलकम है आपका भी। और एम ताहिर जी लिखते हैं कि अमन खान सर के शो में आपकी वो पुरकशिश आवाज और बेमिसाल तरन्नुम में पिरोया, और मेरे पसंदीदा नगमा सुनकर दिल खुश हो गया है। आपने जिस खूबसूरती से ये गाना पेश किया है वो सीधा रूह में उतर गया है। और इस बेहतरीन अदायगी और शानदार पेशकश के लिए ढेरों मुबारकबाद एम ताहिर बढ़ापुर बिजनौर उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका एम ताहिर साहब। और अगला जो डिमांड, अच्छा निशान राय बड़ो जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा डिमांड था। और शिल्पा बहन जी लिखते हैं कि हो ना जाए मोहब्बत किसी से, बहुत बढ़िया गाना लगा है, मजा आ गया सुन के। इसी बात पर जो डिमांड है बाबूलाल अंजना जी का है, सुनना चाहते हैं ओढ़ ली चुनरिया तेरे नाम की, इंजॉय कीजिएगा इस गाने को, मैं सुनाऊंगा ओढ़ ली चुनरिया, इंजॉय कीजिएगा।

और मैं कहूंगा यहाँ पे सुनीता गोप जी से कि आपने जो अनम इन फिल्म का गाना भेजा है, मैं अनम का गाना नहीं प्ले कर पाऊंगा क्योंकि उसका क्वालिटी अच्छा नहीं जाता है जब मैं ऑन एयर करता हूँ। हाँ, अगर आरजे वंशिका जी या आकांक्षा जी शो करेंगे वहाँ पे वो कीजिएगा, उनके सॉफ्टवेयर से वो गाना प्ले होगा। मेरे सॉफ्टवेयर चूंकि मैं कंप्यूटर से प्ले करता हूँ तो वो गाना प्ले नहीं हो पाएगा क्योंकि उसकी आवाज़ बिल्कुल नहीं जाएगी, सिर्फ म्यूजिक जाएगा। इसलिए आप चाहें तो गाना चेंज कर सकती हैं या कुछ और।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बना दे। बहुत सारे फीडबैक मेरे पास आ चुके हैं और शामिल करता हूं मैं सबसे पहले तो रवि मोहड़े जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत वेलकम करते हैं सभी दोस्तों को, गुड इवनिंग कह रहे हैं। और अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग चल रहा है। और आरिफ संगीत जी क्या कहते हैं?
1: अमन सर जी, आज की थीम में बहुत ही प्यारे प्यारे शब्द लेकर आए हो और बहुत ही प्यारे प्यारे गाने प्ले हो रहे हैं और हम सुन रहे हैं। बहुत ही शानदार गाने चल रहे हैं। शुक्रिया। मैं आरिफ सिंधी, गुजरात गांधीनगर से, सुनते रहो रेडियो हॉट स्टार, आरजे अमन सर जी के साथ, जो दीवाना बना दे।
0: धन्यवाद। और काजल झका जी लिखते हैं गाना बहुत ही प्यारा है। और रेनबो लवर जी लिखते हैं कि जब प्यार का तो डरना क्या है, इस लाइन की वजह से लाखों आशिक बीच बाजार में जूते खा चुके भाई सच में कहा। आशीर्वाद भाई जी लिखते हैं कि ओल्डी चुनरिया मेरे तेरे नाम की, बहुत ही प्यारा गाना है, मजा आएगा सुन के। और गोपाल परिदार जी लिखते हैं कि अमन सर जी आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा चल रहा है। वाह वाह वाह वाह, क्या कहें, सभी गाने बहुत अच्छे अच्छे चल रहे हैं। और ये सुनते हैं, ये क्या कहते हैं,
2: ये भी गाना बहुत प्यारा था, ओढ़ी चुनरिया मेरे नाम की, बहुत बहुत धन्यवाद एमडी फैज आलम।
0: धन्यवाद देते हैं आपको भी। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि अमन जी बहुत बहुत धन्यवाद गाना प्ले करने के लिए। और कुंता जी लिखते हैं कि अमन सर जी आज के थीम जितनी भी प्यारी है उतने प्यारे प्यारे गाने भी चल रहे हैं जी, थैंक यू सो मच। इसी बात का अगला जो डिमांड है, अशोक जसमुख जी, आत्माराम पाटिल जी और सर्वेश भगत जी, तो आप सभी के पसंद पे सुनवाता हूँ।
3: नमस्कार अमन सर।
0: नमस्कार।
3: मैं निम्बोरा महाराष्ट्र से अशोक देशमुख
0: जी, वेलकम है आपका।
3: आज है स्टार थीम चॉइस, तो मुझे एक गीत सुनना है। फिल्म का नाम है गजब तमाशा और गाने का बोल है, चुनरी प्यार की उड़े आसमान में, तेरे जैसा मेरे जैसा कोई नहीं इस जहान में। ये गीत सबसे पहले आपको और आपकी सुंदरता की मूर्त को और जितने भी हॉटस्टार सुनने वाले श्रोता है उन सबको ये गीत सुनवा दीजिए सर, धन्यवाद।
0: सर्वेश भगत जी।
4: आरजे अमन सर जी, आज हमारा शुभ संध्या, आज हमारा फरमाइश का फिल्म है गजब तमाशा, गाने का बोले चुनरी प्यार की उड़े आसमान में। हॉटस्टार जो सबको दीवाना बनाते हैं, सभी बड़े को प्रणाम, सभी छोटे को आशीर्वाद। हम सर्वेश भगत अजरजंदा जिला वैशाली बिहार से बोल रहे हैं। हमारा परिवार सतीश भगत, अमन भगत, भरत किशोर भगत, आनंद शिकर, आनंद कुमार, सोनी कुमार, मनी कुमारी, सूरज कुमार, मनोज जायसवाल, अशोक देशमुख जी, आत्माराम पाटिल जी, सैयद यूनुस जी, आरजे मंसर जी, सुंदरता की मूर्त जी, आरजे वंशिका जी, आरजे आकांक्षा जी, आरजे सोनी जी, आरजे एम एस परमार जी, आरजे रत्ना जी, आर सभी भाई, आर सभी बहन, आर सभी लिसनर इसमें शामिल, सभी को सुनर जी का जयराम जी के।
5: हेलो प्यारे आरजे अमन खान सर जी, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, सप्रेम नमस्कार। आज थीम चॉइस में सर मूवी है गजब तमाशा, 92 में ये मूवी रिलीज हुई थी। सिंगर है कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू। बोल है सर, चुनरी प्यार की उड़े आसमान, तेरे जैसे मेरे जैसा कोई आशिक नहीं जहान से। और आर्टिस्ट है सर राहुल रॉय, अनु मलिक, अन्नू अग्रवाल। म्यूजिक है आनंद मेलिन जी का और गीतकार है सर समीर। और डेलीगेशन है सबसे पहले अमन सर जी आप,
0: थैंक यू,
5: सर्वेश भगत जी है, अशोक देशमुख जी है, सैयद यूनुस जी है, दत्ता कदम जी है, गजानन बहुसालोकर, प्रमोद बगाड़े, काजल झा, बबीता जी, कुंता बहन जी, ज्योति खड़बले जी, आरजे रत्ना दी जी और जितने भी रेडियो हॉटस्टार सुन रहे हैं सभी के लिए आज का गीत बिल्कुल समर्पित है सर, सुना दो। मैं आत्माराम पाटिल, थैंक यू।
0: ओके जी, गाना तो सुनाऊंगा मैं आपको, जरूर सुनाऊंगा। और क्योंकि इतने सारे गाने मतलब यानी पर पड़े हुए हैं, देख रहा हूँ कहाँ गया, हाँ मिल गया, आई जवानी, हाँ ये वाला चुनरी पड़ गया।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे आपको। और यहाँ पे राहुल पासी जी लिखते हैं कि ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और गजल अंश लिखते हैं कि आदरणीय कुंता बनर्जी, नीलेश पिरकार जी, बाबूलाल अंजाना जी और सभी के पसंद बेहतरीन लगी है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और दत्ता जी लिखते हैं कि अमन सर जी सभी गाने बहुत अच्छे अच्छे चल रहे हैं, कार्यक्रम सुपर हिट हो रहा है। और हमारे रणवीर लेफर जी लिखते हैं कि देखिए सर जी, गाना जहाँ फिट बैठेगा मैं वहीं प्ले करूँगा, आप टेंशन मत लीजिए, ये मत कहिए कि मेरा गाना प्ले कर दीजिए, क्योंकि अब ऐसा गाना है वो उसके लिए मुझे ढूंढना पड़ा कि मैं किस जगह प्ले करूँ। मैं दौड़ा रहा हूँ, मैं अपना देखता हूँ, जहाँ फिट बैठेगा जरूर प्ले कर दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। थोड़ा सा समय लग सकता है, ये तो है, ये फीडबैक सुनते हैं।
1: अजय अमन सर जी,
0: जी जी,
1: हमारा तीनों भाई का मिली जुली फरमाइश, हमारा और अशोक देशमुख जी और आत्माराम पाटिल जी तीनों आदमी का गाना अपने प्रोग्राम में जगह दिए, लाख लाख धन्यवाद, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका भी। और यानी विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि गुड सॉन्ग है, अच्छा जी। और ये सुनते हैं क्या कहते हैं,
2: तीनों दोस्तों की मिली जुली फरमाइश का ये गाना काफ़ी अच्छा था और सर्वेश भगत जी को स्पेशल थैंक यू, उन्होंने मेरे को इस गीत में शामिल किया।
0: ओके जी, वेलकम है आपका भी। और यहाँ पे काजल ढका जी लिखते हैं, गाना बहुत ही प्यारा लगा है, सर्वेश भगत जी का, अशोक देशमुख जी का, आत्माराम जी का और ये फिर में
3: चुंदरी प्यार क्यों रे आसमान में, तेरे जैसा मेरे जैसा कोई आसिक नहीं इस जहान। बहुत शानदार गाना और अपने गाने में शामिल किए, दिल से धन्यवाद।
0: ओके जी, और यहाँ पे ये फीडबैक सुनाते हैं,
4: अशोक देशमुख जी, सर्वेश भगत जी, आत्माराम पाटिल जी, तीनों दोस्तों की फरमाइश बहुत ही शानदार और हमें सुनवाया, तीनों दोस्तों का शुक्रिया। और अमन सर जी, आपने प्ले किया, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। मैं आरिफ सिंधी, गुजरात गांधीनगर से,
0: धन्यवाद देते हैं आपका भी। और आमना खान जी लिखते हैं कि बहुत ही अच्छा, ओके अगला हफ्ते का थीम आप दे रही हैं मुझे, ओके इस पर मैं गौर करूंगा, थैंक यू सो मच आपका भी। और अशोक देशमुख जी लिखते हैं कि धन्यवाद अमन सर, हमारी फरमाइश का गाना सुनवाने के लिए बहुत शुक्रिया। बाबूलाल जी लिखते हैं कि ये तीनों दोस्तों की डिमांड बहुत ही प्यारी लगी है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद देते हैं। कुंता बनर्जी जी लिखते हैं कि अशोक देशमुख जी, सर्वेश भगत जी और आत्माराम जी की पसंद बहुत ही शानदार लगी है, मिली जुली डिमांड, सभी को धन्यवाद। और गजानंद जी लिखते हैं कि आदरणीय अशोक देशमुख जी, सर्वेश भगत जी, आत्माराम जी की पसंद गजब तमाशा का बहुत अच्छा लगा है। राहुल पासी जी लिखते हैं कि ये तीनों दोस्तों की मिली जुली डिमांड बहुत ही प्यारा है। और अनिल मेहता जी लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब गाना। अगला जो डिमांड है हमारे रवि महाराज जी का है, ये सुनना चाहते हैं

0: वेलकम एक और रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे। बहुत सारे फीडबैक आ चुके हैं। काजल झका जी लिखते हैं आज तो सभी गाने एक से बढ़कर एक प्ले हो रहे हैं और ये बहुत ही डांस कर रही हैं। और यहाँ पे निशा साहब बोले लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना चल रहा है। और गजानंद जी लिखते हैं कि दोस्त रवि महा जी के पसंद फिल्म करी मेहरबानी गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस गाने के लिए। ये फीडबैक सुन लेते हैं।
1: अजय अमन शाह जी रवि मुहाले जी अपने गाने में शामिल किए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपको भी धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सर।
0: और अकुंता बेन जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारी डिमांड है, धन्यवाद इस गाने के लिए भी। और रवि मार लिखते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सर जी गाना प्ले करने के लिए। दिलजीत राजी लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग। इसी बात पगला जो डिमांड है किन का है जरा सर मैं देख लेता हूँ क्या नाम था इनका। गीता था या नीतू था? हाँ गीता शरण जी। गीता शरण जी ये सुनना चाहती हैं गोरी है कलाई है। इंजॉय कीजिए गीता शरण जी। ये है सीतामढ़ी बिहार से।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो आपको दीवाना बना दे और बहुत सारे फीडबैक आ चुके हैं मेरे पास। काजल झका जी तो आज तो कमाल कर दिया, एक बार फिर से लगातार मैसेज पे मैसेज किए जा रहे हैं, एकदम फीडबैक दिए जा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सरबजीत शेट्टी जी लिखते हैं कि कार्यक्रम शानदार चल रहा है। ओहो, मुझे पता है आपने क्यों मैसेज किया, क्योंकि अगला आपको अगला गाना भी गाने वाला है ना, इसीलिए मैं बहुत चला के यहाँ पर। राहुल पासी जी लिखते हैं कि गोरिया कलाइया गाना मुझे बहुत ही प्यारा लगा है। और दिलजीत राज जी लिखते हैं कि वेरी वेरी वेरी नाइस सॉन्ग अमन सर जी, ओके जी। और बाबूलाल अंजना लिखते हैं कि गीता सर जी की डिमांड बहुत ही प्यारी लगी है। और यहाँ पे आमना खान लिखते हैं कि गाना बहुत ही प्यारा है ना, ओके जी। और अकुंता बिरे जी लिखते हैं कि वेरी वेरी वेरी नाइस सॉन्ग, थैंक यू सो मच। और ज्योति खटवाड़ी जी लिखते हैं कि अमन जी ओके जी फिलहाल आएंगे। और यहाँ पे यानी कि मीना इब्राहिम जी लिखते हैं कि वाह वाह वाह ये कितने शानदार गाना है। ओके, निशांत राय बोले जी लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब गाना है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और यहाँ पे और सुनीता गोप जी लिखते हैं कि धन्यवाद अमन सर जी, ओके ठीक है भेज दिया है, ओके दोबारा ओके। और गजानन जी लिखते हैं कि गोरी है कलाइए वाला गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं। दीपक कुमार गायकवाड़ जी लिखते हैं कि गाने तो बहुत सारे हैं, रेडियो चैनल सुनते हैं पर जिसमें श्रोताओं का प्यार और फीडबैक और आरजे का प्यार दुलार और मेहनत ना हो वह स्टेशन बस स्टेशन रह जाता है, यानी और यानी परिवार नहीं बन जाता है, रेडियो हॉट स्टार हमारे एक परिवार का सदस्य हो गया। ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच इतने प्यारे फीडबैक के लिए, ये फीडबैक सुनते हैं।
1: नमस्ते अमन सर जी,
0: नमस्ते।
1: लाल चूड़ी ला के दे दो कोई बात नहीं, हरा में लाल भी अच्छा लगता है, मिला के पहना जाएगा, बीच में हरा फिर लाल फिर बीच में हरा फिर लाल, मिक्स करके पहना जाएगा।
0: धन्यवाद, ओके इसी बात पर हरी चूड़ी वाला गाना है, इसके बाद फिर प्ले करूंगा ज्योति खटवाड़े जी का, ओके। और जी और जाकिर खान जी लिखते हैं कि आकाश के यानी कि तारों में खोया है सारा जहां, लगता है यानी प्यारा एक ता एक तारा उन तारों में सबसे प्यारा है एक सितारा जो इस वक्त पढ़ रहा है मैसेज हमारा। ओहो क्या बात है, मंकेश दशमुख जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं, लिखते हैं कि सभी गाने बहुत अच्छे अच्छे लग रहे हैं। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार गाना चल रहा है, मजा आएगा सुन के। और ये फिर
2: गोरी है कलैया तू ला दे मुझे हरी हरी चूड़िया, अपना बना ले मुझे बाल माँ, गोरी है कलैया। काफी प्यारा सॉन्ग, और अब तो हरी चूड़ी का कुछ काम नहीं है क्योंकि सावन खत्म हो चुका है, बट चूड़ी तो चूड़ी होता है और श्रृंगार के लिए ये बहुत आवश्यक चीज है, तो कोई बात नहीं। और गाना मस्त है, बजाने के लिए अमन भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और जिनका फरमाइश था उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ओके जी, इसी बात पर अगला जो डिमांड है हमारे सरबजीत सेठी जी का है, सुना चाहते हैं कि तेरे लिए लाया हूँ मैं लाल लाल चूड़ियाँ, और ये गाना है और मैं न प्ले करूँ इम्पॉसिबल, वही नहीं सकता है।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे। आरजे सोनी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। आरजे सोनी जी और काजल झका जी कहते हैं कि गाना बहुत ही प्यारा लग रहा है, और आत्माराम जी क्या कहते हैं सुनते हैं।
1: अमन सर जी सभी जिम्मेदारी के काम निपटकर सभी लोग रेडियो हॉटस्टार पर आते हैं, ये खास बात है। और जब सब इकट्ठे आते हैं तो उसमें जो खुशी मिलती है वो बहुत निराली होती है सर। शुक्रिया सभी को। मैं आत्माराम पाटिल,
0: धन्यवाद देते हैं आत्माराम पाटिल जी। गजानंद जी लिखते हैं सर्वजीत शेट्टी जी के पसंद, तेरे लिए लाया हूँ लाल लाल चूड़िया, गाना सुनकर मजा आ गया। और बबीता जी लिखते हैं कि लाल लाल चूड़िया बहुत अच्छा गाना लगा सुनने को मिला। और नीतू शरण जी लिखते हैं कि आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यारे प्यारे फीडबैक देने के लिए। और अमन जी आपका भी शुक्रिया गाना बजाने के लिए। ओके जी, और ये फीडबैक सुन लेते हैं क्या कहते हैं।
2: हेलो अमन सर, मैं फिर एक बार मिसा अंगद, और अभी जो गाना आपने सुनवाया तेरे लिए लाया हूँ मैं लाल लाल चूड़िया, अमन सर जी आपका और मेरा ये सबसे फेवरेट गाना है, और ये गाना आपने सभी दोस्तों को सुनवाया तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमन सर जी। आप बहुत खुश हुए इस गाना सुन के, आपके हाव भाव से हमको पता चलता है, और जो आप खुश है तो हम भी खुश है अमन सर जी। मुझे बहुत अच्छा लगा ये गाना।

क्या बात है, लग रहा है कि दिल की गहराई मत बहुत इन चोट खाए हुए आशिक लगते हैं आप, क्योंकि कई कोई ऐसी बातें कह जाते हैं जाने अनजाने में, लगता है कि बहुत बड़ा घाव मिला है आपको। दिलजीत राजी लिखते हैं कि वह क्या सुनेंगे अमर सर जी, दिल खुश हो गया सुनकर। और जुड़ चुकी हैं यहाँ पे यानी कि तोशदीना खातून जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। तो वालेकुम असलम कुंता जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच सर विजय शेट्टी जी, इतना प्यारा गाना सुनवाया आपने। निशांत राय बोले लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है, नाइस सॉन्ग है। बाबूलाल जी लिखते हैं कि तेरे लिए लाया हूँ लाल लाल चूड़िया, गाना बहुत ही प्यारा है। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि बहुत बेहतरीन दिमाग चल रही है सरबजीत शेट्टी जी की। रवि मोड़ा जी लिखते हैं कि सुपर हिट लाजवाब गाना, तेरे लिए लाया हूँ मैं लाल लाल चूड़िया। अगला जो डिमांड, जैसे कि मैंने कहा था, ज्योति खटवट जी का सुनवा रहा हूँ, हरी हरी कांत की चूड़िया, इंजॉय कीजिए।

0: वेलकम बैक, ये हरे कांच की चुड़िया और यहाँ पे तो जिला खादिन जी लेते हैं। वाओ, सुपर सॉन्ग चल रहा है, मजा आ रहा है। राहुल पासी जी लेते हैं कि ये गाना भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही पसंद आया है। आत्माराम जी क्या कहते हैं, सुन लेते हैं इनके लिए।
1: अमन सर जी, जन्माष्टमी के इस शुभ अवसर पर हमारी बहना ज्योति खटबले, इनका गीत बहुत ही शोभा दे रहा है और शुक्रिया उनको।

0: मैं आत्माराम पाटिल, थैंक यू
1: जी, धन्यवाद देते हैं आत्माराम पाटिल जी। ओके जी, और अकाजल झका जी लिखते हैं गाना बहुत ही प्यारा लग रहा है, और प्रमोद कुमार लिखते हैं बहुत ही लाजवाब चॉइस है बिल्कुल, और यहाँ पे मीना जी लिखते हैं वाओ क्या गाना है क्या बात है, गजानंद जी लिखते हैं ज्योति खुरवाई जी के पसंद बहुत ही पसंद आई है, धन्यवाद देते हैं उनको, और मनीषा शर्मा जी लिखते हैं सुपर सॉन्ग, ज्योति जी थैंक यू सो मच सुनवाने के लिए, और सर्वजीत सर जी का
2: धन्यवाद, अमन सर जी आपने मेरा गीत चलाया और जिन्होंने मेरे गाने पर फीडबैक दिया उनका भी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, सभी गीत एक से बढ़कर एक चल रहे हैं तो सुनते रहे रेडियो हॉटस्टार जो सबको दीवाना बना दे, मैं सरबजीत सेठी फाजिलका पंजाब से।
1: ओके, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सरबजीत सेठी जी, और कुंता जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारी डिमांड है, इसी बात अगला जो डिमांड है आरजे सोनी जी का सुनवाते हैं, इंजॉय कीजिए।

0: दोस्तों, ये भोजपुरिया महारानी जी का गाना सच में बड़ा निक लागल है और विष्णु जी कहते हैं गुड सॉन्ग है जी बिल्कुल। और यहाँ पर रवि महर्षि लिखते हैं कि गाना लाजवाब चल रहा है और ज्योति खड़वा जी लिखते हैं थैंक यू सो मच अमन जी मेरा गाना प्ले करने के लिए दोस्तों का भी धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। बाबूलाल जी लिखते हैं ज्योति जी का भी डिमांड मुझे बहुत अच्छा लगा उनको भी धन्यवाद देते हैं। और काजल झका जी लिखते हैं कि ये भोजपुरिया डिमांड बहुत ही प्यारा लगा थैंक यू सो मच आरजे सोनी जी और ये फीडबैक सुन लेते हैं।
1: आरजे अमन सर जी आरजे सोनी जी अपने गाने में शामिल किए हैं और सभी भाई या सभी बहन अपने अपने गाने में शामिल करते हैं सभी को भी और सोनी जी को भी धन्यवाद करते हैं आपको भी धन्यवाद देते हैं थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका भी और हमें बाबूलाल अंजना लिखते हैं कि आरजे सोनी जी के पसंद मुझे बहुत पसंद है धन्यवाद देते हैं। बागेश्वर निशा जी लिखते हैं कि बहुत ही निक लागल ये भोजपुरी गाना अगला भी सुनिए यानी कि शर्मा जी के पसंद और शर्मा जी के पसंद में ये गाना एंजॉय कीजिए।

अरे लिख रहा ना, बहुत ही प्यारा नाम बा। और काजल झका जी रहते गाना तो इतना निक लगा था कि हम कहीं बताइए, डांस करे पे मजबूर करते थे बाबा। कैसा निशा जी रहते अमन भैया जी, भोजपुरी गानों की बरसात हो रही है। हाँ एक अगला भी सुनिए, यानी कि सिया जी के पसंद, और सिया जी सुनना चाहती है ये बलमा बलमा वाला कोई गाना है, इंजॉय कीजिए।

0: और एक और भोजपुरी गाने के बाद हम चलेंगे फिर हिंदी गाने की तरफ, क्योंकि इस गाने को बजाना मतलब यहीं पे फिर बैठ रहा है, इसलिए गाना बजाऊंगा फिर जाऊंगा हिंदी गानों की तरफ, और हिंदी गाने के बाद फिर आऊंगा, एक दो भोजपुरी गाना भी है उसको भी शामिल करूंगा। लेकिन फिलहाल फीडबैक मेरे पास आए हैं, यानी कुंता मिनी जी लिखते हैं कि आरजे सोनी जी की डिमांड बहुत ही प्यारी थी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि ये भी भोजपुरी गाना बहुत ही अच्छा लगा है, ओके जी। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि शानदार डिमांड है, ओके। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि सभी गाने एक से बढ़कर एक चल रहे हैं। काजल झका जी लिखते हैं गाना बहुत ही प्यारा लगा है। और यहाँ पे रवि महाराज जी लिखते हैं कि सुपर हिट लाजवाब भोजपुरी सॉन्ग चल रहा है। और आत्माराम जी क्या कहते हैं सुन लेते हैं।
1: अमन सर जी, रेडियो हॉटस्टार का प्रसारण बहुत ही साफ सुथरी और क्लियर सुनाई दे रहा है।
0: अच्छा,
1: आपका गुनगुनाना भी इसमें बहुत अच्छा लगता है। आत्माराम पाटिल,
0: धन्यवाद देते हैं आपको भी। और रणवीर सिंह जेठालाल जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपके भी। बाबूलाल जी लिखते हैं कि ये गाना भी मुझे बहुत प्यारा लगा। अगला जो डिमांड है रुबीना नाथ जी का है, और इनका चुड़ी जो है ना वो लव यू कहता है। अच्छा सुनवाते हैं, इंजॉय कीजिए।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार, जो आपको दीवाना बना दे, दीवाना बना दे, दीवाना बना दे। बहुत सारे फीडबैक मेरे पास आ चुके हैं और विश्व चंद्र जी लिखते हैं कि क्या गाना है, एकदम मजा आ गया सुन के। और दीपक को मैं गायकवाड़ जी लिखते हैं कि ओके। और काजल धका जी लिखते हैं गाना बहुत ही प्यारा है जी, एकदम इनका दिल खुश हो गया है। और बबीता जी लिखते हैं कि नमस्ते मासा जी, ये वाला गाना मुझे बहुत ही पसंद आया है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए भी। और अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि सुपर हिट भोजपुरी सॉन्ग है जी, बिल्कुल। और बागेश्वर निषाद जी लिखते हैं कि शानदार गाना लगा है जी। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि रुबीना नाथ जी की पसंद शानदार डिमांड, ओके। गजानंद जी लिखते हैं कि रुबीना नाथ जी की पसंद बहुत बेहतरीन लगी है, लाजवाब लगी है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उनको। और कुंता बेनी जी लिखते हैं कि लाजवाब डिमांड के लिए थैंक यू सो मच रुबीना नाथ जी। और रणवीर सिंह जेठाला लिखते हैं कि ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा। अगला जो डिमांड है इस्माइल खान जी का है, सुनना चाहते हैं चूड़ी बजी है कहीं दूर छन छन छन छन छन। एंजॉय कीजिए।

वेलकम एक रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे और यहाँ पे निशांत है बोले लिखेंगे बहुत ही बढ़िया गाना है और काजल झका जी लिखते हैं गाना बहुत ही प्यारा है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि सुनते रहे रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे, मजा आ गया सुन के। और सभी गाने गजानंद जी लिखते हैं कि इस्माइल खान जी के बसंत चूड़ी बजी है कहीं दूर छन छन। और आत्माराम जी लिखते हैं कि उदित नारायण की आवाज़ में गाना मुझे बहुत ही प्यारा लगा। इसी बात पर अगला जो डिमांड है अनिशा सिंधे जी का है वो सुनना चाहती हैं, क्यों खनके तेरी चूड़ी क्यों खनके तेरे पायल। इंजॉय कीजिए।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना रणवीर सिंह जैसा लिखते हैं कि गाना बहुत ही प्यार लग रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि इस्माइल खान जी की पसंद मुझे बहुत पसंद है, धन्यवाद देते हैं उनको भी। और गजानन जी लिखते हैं कि आदरणीय आत्मानाम पाटिल जी का फीडबैक मुझे अच्छा लगा, उनको धन्यवाद। निशान देवो लिखते हैं कि गाना बहुत ही प्यारा है। और काजल जगा जी लिखते हैं ये भी गाना बहुत लाजवाब है। अगला जो डिमांड है हमारे संदीप सुतार जी का है, संदीप सुतार जी सुनना चाहते हैं ये प्यारा सा गाना, एंजॉय कीजिए।

वेलकम बैक ऑन रेडी हॉटेस्ट जो आपको दीवाना बना दिया। और कुंता जी लिखते हैं कि ये गाना भी बहुत लाजवाब लगा है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए भी। और गजानंद जी लिखते हैं संदीप सुता जी के पसंद बहुत अच्छी लगी है। और निशांत है वो लिखते हैं कि ये गाना बहुत ही लाजवाब है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। राहुल पासे जी लिखते हैं कि ये सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है, धन्यवाद देते हैं। और बाबूलाल जान लिखते हैं कि संदीप सुधा जी की डिमांड बहुत ही प्यारी है। ओके जी, और आमन्ना खान लिखते हैं कि ये गाना सुपर पसंद है। जी बिल्कुल, और इसी बात पर अगला जो डिमांड है हमारे गजानंद जी का ग्रुप का, तो एंजॉय कीजिए इस गाने को, मैं प्ले कर रहा हूँ। और नेक्स्ट रेनबो लवर जी का

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे। काजल जगा जी लिखते हैं गाना तो बहुत ही प्यारा लग रहा है जी, एकदम मजा आ रहा है सुन सुन के। और रणवीर सिंह जरला लिखते हैं कि ये पहले शोर मचाए, गाना अच्छा लगा है इनको। ओके जी, और अकुंता बनी जी लिखते हैं कि आदरणीय गजानंद सरकार जी की ये ग्रुप डिमांड बहुत ही प्यारा है, धन्यवाद देते हैं उनको। और गजानंद जी लिखते हैं कि अमन सर किसी जी को प्यार भर नमस्कार है, गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। बाबूलाल जी लिखते हैं कि दोस्त गजानंद जी की ग्रुप की डिमांड बहुत ही अच्छी लगी है, लेकिन ग्रुप में सिर्फ गजानंद ही बजे हुए, बाकी लोग गायब हुए हैं। प्रमोद कुमार लिखते हैं कि रेस्पेक्टेड दोस्त यानी गजानंद सुलकार जी की पसंद बहुत अच्छी लगी है, धन्यवाद देते हैं उनको भी। और ये फीडबैक सुन लेते हैं।
1: अमन सर जी गजानंद बाबू ग्रुप की पसंद बेहतरीन, लेकिन ग्रुप के साथी हाजिर नहीं है तो थोड़ा हल्का हल्का सा लग रहा है। शुक्रिया भाई को, मैं आत्माराम पटेल। ओके
0: जी, वेलकम है आपका भी। और दीपक कुमार गायकवाड़ जी लिखते हैं कि हमारे दिल के अरमा, हमारे दिमाग की सोचने समझने की शक्ति, लेटर के ज़माने में जो हम इन दिल से यानी लिखते थे वो सब कहीं खो गया था, रेडियो हॉटस्टार ने आकर इन्हें वापस कर दिया है, एक्टिव कर दिया उनको। बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता चाहता हूँ, धन्यवाद देते हैं आपका भी। और अनिल कश्यप जी लिखते हैं वाओ बेस्ट वॉइस है, बेहतरीन पसंद है, लाजवाब डिमांड है, थैंक यू सो मच। और ये फीडबैक
2: आरजे अमन सर जी, गजानंद सुलकर जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी, अगला जो डिमांड हमारे रेनबो लवर जी का है तो सुनवाते हैं, एंजॉय कीजिए ये गाने को।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बना दे। बहुत सारे फिर देख आ चुके हैं मेरे पास, और शिल्पा मंजरी से की यानी पैडिया हो गाना बहुत अच्छा लगा है। और सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं,
1: आरजे अमन सर जी, गजानन सुलकर जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
0: ओके जी, वेलकम करते हैं आपका भी। और रवि महर जी क्या कहते हैं, इनकी भी सुन लेते हैं।
2: बहुत ही सुपर लाजवाब सॉन्ग हमारे परम मित्र गजानन सालोकार जी के ग्रुप का, मजा आ गया गाने में।

0: बहुत ही सुपर लाजवाब सॉन्ग, मजा आ गया
1: जी। धन्यवाद देते हैं आपको भी, और यानी प्रमोद कुमार लिखते हैं कि बहुत ही शानदार डिमांड है। और जन्नत जी जुड़ चुके हैं दिल्ली से, बहुत बहुत वेलकम करते हैं जन्नत जी, आपका रेडियो हॉट स्टार में स्वागत है। काजल झका जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना लगा, नीक लागल गाना। ओके जी, बाबूलाल अंजान लिखते हैं कि भोजपुरी डिमांड बहुत ही शानदार लगा है। और ये फिर
2: मेरे दोस्त रेनबो लवर जी का ये फरमाइश था, उनको धन्यवाद इस गाने के लिए। और मेरे दोस्त का गाना हो और मैं ना गुनगुनाऊं तो ये तो हो ही नहीं सकता।
1: अच्छा जी।
2: थोड़ा सा गुनगुना देता हूँ।
1: ओके।
2: कि हॉट स्टार सबके दिलवा पर राज करता।
1: अच्छा।
2: आए के बंद मत करें भैया, ई बड़ा आवाज करता।
1: अब विष्णु चंद्र जी जीते के गाना बहुत ही प्यारा लगा है, और ये फीडबैक सुन लेते हैं क्या कहते हैं।
3: हेलो अमन सर,
1: बोलिए।
3: अभी आपने हमारी ग्रुप फरमाइश का गाना सुनवाया जो आदरणीय गजानन सालोकर जी का गाना था, उनके गाने में मुझे याद किया गजानन सालोकर जी ने, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और अमन सर गाना बहुत मस्ती भरा था, बहुत मजे लेके हमने गाना सुना, जो भोजपुरी गाना था मुझे बहुत पसंद आया। गजानन सालोकर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छा गाना डेडिकेट किया।
1: ओके,
3: धन्यवाद।
1: अगला जो डिमांड है हमारे जाकिर खान जी का है, सुनना चाहते हैं ये प्यारा सा डिमांड, एंजॉय कीजिए।

बिल्कुल ये गाना भी यानी कि आज के ये विनर बनने लायक है, आपने सही कहा आमना खान जी। कोशिश करता हूँ इस गाने को विनर बनाने के लिए। वैसे एक गाना मैं बना चुका हूँ और एक गाना और बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पे कुंता जी लिखते हैं कि शानदार डिमांड है, धन्यवाद जाकिर खान जी का। और काजल झका जी लिखते हैं कि ये गाना भी बहुत ही प्यारा है। और गजानंद जी लिखते हैं कि आदरणीय दोस्त रवि मार जी का मिसाल का जी ने फीडबैक दिया, बहुत अच्छा लगा है। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि तौबा कैसे है नादान, घुंघरू पायल के मजा आ गया सुनकर। सर्वजीत शेट्टी जी लिखते हैं कार्यक्रम बहुत ही शानदार चल रहा है। और रणवीर सिंह जेठालाल लिखते हैं कि तौबा कैसे है नादान, घुंघरू पायल के गाना बहुत ही प्यारा है। और यहाँ पे जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है सना इब्राहिम जी, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और शिल्पा बहन जी लिखते हैं कि क्या हुआ आज नेटवर्क बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है कभी कभी, कोई बात नहीं, फिलहाल अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ वो हमारे नंदलाल यादव जी का है। नंदलाल जी सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गाना, इंजॉय कीजिए।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बना दे। बहुत सारे फीडबैक आए हुए हैं। निशांत साहब बोले लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग चल रहा है, और गजानंद जी लिखते हैं कि जाकिर जी की पसंद बहुत अच्छी लगी, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उनको भी। और काजल झका जी लिखते हैं कि ये गाना भी बहुत ही प्यारा है, और जाकिर खान जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच अम्मा जी, और सभी दोस्तों का भी शुक्रिया फीडबैक देने के लिए। दीपक मैं गायक और जी क्या कहते हैं सुन लेते हैं।
1: हमारे स्टार आजय मंजी
0: जी, जी
1: आपका प्रोग्राम सुनकर शाम से कब रात हो जाती है पता ही नहीं चलता है।
0: मुझे भी नहीं।
1: आज का प्रोग्राम भी बहुत बढ़िया जा रहा है।
0: धन्यवाद।
1: रेडियो हॉट स्टार के परिवार के सदस्य रोज बढ़ते रहें। आपके प्रोग्राम सुनने वालों की संख्या दिन दुगनी रात चौगनी में वृद्धि करें, मैं यही कामना करता हूं। मैं दीपक गायकवाड़ सिवनी मालवा मध्य प्रदेश से।
0: धन्यवाद दीपक जी, बहुत ही आपका प्यारा फीडबैक लगा, और ये फीडबैक सुनते हैं क्या कहते हैं।
2: वाह अमन सर जी, क्या गीत बनाया है जिसका आने पाँव में घुंघरू और पायल
0: जी,
2: बहुत
0: जी,
2: अच्छा
0: जी।
2: लगा, शुक्रिया। मैं आत्माराम पाटिल।
0: धन्यवाद देते हैं आपको भी। और कुंता बेनी जी लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग है, थैंक यू सो मच इतना बेहतरीन गाना सुनाने के लिए नंदलाल यादव जी। अजय कुछ लिखते हैं कि मैंने भी गाना को पहली बार सुना, मजा आ गया सुन के। और गजानंद जी लिखते हैं कि और नंदलाल यादव जी के पसंद बेहतरीन जी। नंदलाल जी पता ना कहाँ कहाँ से सुन के लाते हैं। नंदलाल जी हुए, शाहिद अंसारी जी हुए, और मतलब हमारे मतलब बहुत से दोस्त हैं, है ना। हाँ, और ये महक जी है, इनका भी गाना बहुत ही यूनिक होता है, अलग होता है। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि सभी गाने सुपर डुपर ही चल रहे हैं। अगला जो डिमांड है हमारे अनिल कश्यप जी का है, ये मेहंदी वाला गाना सुनना चाहते हैं, सुनवा दिया।

और मैं बता दूं कि इसी गाने की डिमांड यानी कि शिल्पा बेन जी ने भी किया है, मैं अभी अभी देख रहा हूँ, यानी चोरी चोरी चुप चुप के से। आई एम सॉरी शिल्पा बेन जी, आप भी शामिल है इसमें।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे। और नंदलाल जी लिखते हैं कि सर जी बहुत बहुत धन्यवाद गाना प्ले करने के लिए, दोस्तों का भी धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। गाजल और गाजल से काजल जी लिखते हैं गाना ये भी बहुत ही प्यारा है। और गजानंद जी लिखते हैं कि अनिल कश्यप जी के पसंद बहुत ही प्यारा साथ में है, यानी कि क्या नाम था भूल गया मैं उनका नाम, हाँ यानी कि शिल्पा बेन जी भी थी इस गाने में। आई एम सॉरी मैं उनका नाम लेना भूल गया था, एक्सट्रीमली सॉरी। ओके जी, और अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच अमर जी गाना प्ले करने के लिए। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि ये गाना भी बहुत ही प्यारा है। और ओके, और यहाँ शिल्पा बहन जी लिखते हैं कि आपका कौन सा गाना अलग है, अलग गाना है, हमें तो चोरी चोरी चुपे चुपे से यही गाना है, शायद आप एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है अलग हो। यह कौन सा गाना है जरा मुझे बताइएगा प्लीज। निशांत अपर लिखते हैं कि बहुत ही बढ़िया गाना है। ओके, और कुंता जी लिखते हैं कि ये सॉन्ग मुझे बहुत ही पसंद है, थैंक यू सो मच। इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो सुना रहा हूँ मैं, किनकी डिमांड है, ये जन्नत जी का दिल्ली से, ये सुनना चाहती हैं, ये खुद सुनना चाहती हैं और मुझे भी डेडिकेट करी है, तो थैंक यू सो मच आपने मुझे डेडिकेट किया। मेहंदी के बूढ़े गाना मुझे बहुत पसंद है, इंजॉय कीजिए।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बना दे। बहुत सारे फीडबैक आ चुके हैं मेरे पास और यहाँ पे यानी काजल झका जी लिखते हैं गाना मुझे बहुत ही प्यारा लगा है और हुकुम चंद जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारी डिमांड है, थैंक यू सो मच जन्नत जी। और अशिल्पा बेन जी लिखते हैं कि ये मेहंदी के बूटे गाना मुझे बहुत ही पसंद है। अच्छा, आपने लिंक भेज दिया मेरे पास, ठीक है, मैं देखता हूँ आपका कौन सा गाना है। अच्छा, मेहंदी है, ओके ठीक है, कोशिश करूंगा आपके गाने को प्ले करने के लिए। इस गाने की भी शायद डिमांड मेरे पास आई हुई है। और गजानंद जी लिखते हैं कि ये मेहंदी के बूटे बहुत ही बेहतरीन पसंद है, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए भी। और दीपक कुमार गायकवाड़ जी का गाना है।
1: हमारे स्टार आरजे अमन सर जी, एक बात बहुत दिनों से कहना चाह रहा था, कह दूं क्या?
0: जी, कहिए
1: कि जैसे ही आपके प्रोग्राम में भोजपुरी गाना बजता है तो मुझे लगता है कि मैं बिहार में घूम रहा हूँ, पर जैसे ही कोई हिंदी गाना, कोई दिल्ली से, कोई मुंबई से, कोई यूपी से, कोई राजस्थान से, कोई एमपी से अपनी फरमाइश भेजता है तो मुझे लगता है कि मैं पूरे हिंदुस्तान में घूम रहा हूँ। धन्यवाद, मैं दीपक गायकवाड़ सिवनी मालवा मध्य प्रदेश से।
0: धन्यवाद देते हैं भाई दीपक जी। और रणबीर सिंह जेठालाल जी लिखते हैं कि ये गाना मुझे बहुत ही प्यारा लगा है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जन्नत जी को। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि ये मेहंदी के बूटे गाना बहुत ही पसंद आया है। और ओके, और यहाँ पे फीडबैक खुल जाए भाई सिम सिंह। और हाँ, निशांत है बोले लिखते हैं कि मेरा फेवरेट गाना है। अच्छा, आपका भी फेवरेट हो गया, ये फीडबैक से लेते हैं।
2: जन्नत जी का प्रेम भरा यह राजगीत बिल्कुल बढ़िया रहा, शुक्रिया, दिल खुश हो गया, आत्माराम पाटिल।
0: ओके जी, धन्यवाद देते हैं। और जन्नत जी लिखते हैं थैंक यू अमन जी मेरा सॉन्ग प्ले करने के लिए, और ये सॉन्ग सबका फेवरेट है। जी सही कहा आपने, मुझे भी अच्छा लगता है। और अंगर मिसाल जी लिखते हैं ये फिर।
3: हेलो अमन सर,
0: बोलिए।
3: अभी आपने हमारी ग्रुप

0: मैं इसका गाना
1: बस ये तो आपका हो गया। फिर दोबारा आपने ओहो ओहो क्या बात है। ओके जी, फिलहाल अगला जो ओके ओके, और यहाँ पे राहुल पासी जी लिखते कि ये चोरी चोरी चुपके चुपके का गाना, मेहंदी वाला गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है, और कुंता बेन लिखते हैं कि बहुत ही प्यारी डिमांड है। अगला जो मतलब इस गाने का जो जवाब है मैं प्ले कर रहा हूँ, मेहंदी से ली गोरी हाथ में मेरे, तुम मेरे बलमा गाना, एंजॉय कीजिए थोड़ा सा।

0: आज मेहंदी लगाने की रात आ गई क्योंकि यानी कल है जन्माष्टमी और आप सबको जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और यानी विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि मेहंदी लगाने की रात आ गई, थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए। और अशुपा बहन जी लिखते हैं कि ये गाना भी बहुत ही प्यारा है। और खुशबू जी लिखते हैं कि ये गाना मुझे भी बहुत पसंद है, ओके जी। और कुंता जी लिखते हैं कि वाह वाह बहुत ब्यूटीफुल डिमांड है, थैंक यू सो मच। निशांत राय बोले लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है और ये फीडबैक
1: बहुत ही सुपर लाजवाब फरमाइश हमारे प्यारे प्यारे अमन सर जी की, मजा आ गया गाने में।
0: थैंक यू सो मच।

0: दोपहर सुबह शाम मजा आ गया।
1: ओके धन्यवाद देते हैं आपको भी। और गजल अंजलि लिखते हैं विष्णु चंद्र जी के पसंद बहुत अच्छी लगी है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और काजल धकाजी लिखते हैं ये गाना मुझे बहुत पसंद आया, थैंक यू सो मच। इसी बात अगला जो डिमांड है वो शिल्पा बेन जी का है। शिल्पा बेन जी एंजॉय कीजिए अपने गाने को।

बिल्कुल मैं फीडबैक शामिल करूंगा बाद में, लेकिन अगला जो गाना मैं प्ले करना चाहता हूँ वो यानी बिंदिया जी की डिमांड है, और बिंदिया जी का गाना मैं जरूर प्ले करूंगा।

और मैं बता दूं कि कल यानी मनीषा शर्मा जी हुई थी विनर और उनका मैंने जल्दीबाजी में गाना मैं उनका गाना नहीं प्ले कर पाया था, उसके लिए आई एम सॉरी। आज उनके भी गाने की डिमांड है, मैं कोशिश करूंगा उनके भी गाने को डिमांड को प्ले करने के लिए। और अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि सभी गाने मस्त मस्त प्ले हो रहे हैं, और कुंता जी लिखते हैं कि शानदार डिमांड के लिए थैंक यू सो मच। और विंध्या जी आप बनती हैं आज के सॉन्ग विनर, बहुत बहुत आपको भी बधाई। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि धन्यवाद देते हैं अमन सर जी, आपने मेरा गाना भी प्ले कर दिया। काजल झका जी लिखते हैं गाना बहुत ही प्यारा लग रहा है, और गजानंद जी लिखते हैं कि विंध्या जी के पसंद अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में बहुत ही लाजवाब गाना, मजा आ गया सुन के। और विष्णु जी लिखते हैं कि ये भी गाना जबरदस्त लगा, मस्त लगा है। ओके, अगला जो डिमांड है वो यानी कि शिवम जी का है, और शिवम जी इंजॉय कीजिए अपने गाने को।

0: और ये भी गाना यानी विनर बनने के लायक है, इसलिए बनाया जाता है इस गाने को भी विनर। ओके, और यहाँ पे काजल से काजल लिखते हैं गाना बहुत ही प्यारा लगा है, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। और काजल लिखते हैं कि यानी कि शिवम जी और बिंदिया जी सभी के पसंद बहुत ही प्यारे प्यारे हैं, बहुत मजा आ रहा है। और मनीषा जी थैंक यू सो मच, आप सुन रही हैं। और ये फिर
1: मोहब्बत की चूड़ी सनम खन कहूंगी, रेडियो स्टार के सुनने वाले और चाहने वाले क्या क्या गाने चुन के लाते हैं, बिल्कुल मजा आ गया पहली बार ये गाना सुना। अमन जी, मैं दीपक गायकवाड़ सिवनी मालवा मध्य प्रदेश से।
0: धन्यवाद देते हैं भाई आपको भी। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि ये मोहब्बत की चूड़ी खनकाऊंगी गाना बहुत ही प्यारा लगा है। और खुशबू जी लिखते हैं कि ये गाना अनसुना है, मुझे ये पहली बार सुनने को मिला है जी बिल्कुल। कुंता जी लिखते हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुल डिमांड है, थैंक यू सो मच जी। और गजानंद जी लिखते हैं कि आज का प्रोग्राम भी झकास हुआ, थैंक यू सो मच। और ये फिर
2: अमन भैया जी, मैं देखता हूँ कि जिन जिन लोगों के गाने चल जाते हैं वो धीरे धीरे साइड होते जाते हैं तो ऐसा अच्छा बात नहीं है, क्योंकि मैं शुरू से अंत तक सुनता हूँ और बाकी लोगों को भी सुनना चाहिए, जिससे पता चलता है कि हाँ भाई उनके गाने को मैंने सुना, मेरे गाने को उन्होंने सुना, तो और बातों का जो आदान प्रदान होता है ना वो बहुत अच्छा लगता है। तो काफ़ी लोग देखते हैं कि प्रोग्राम का जब लास्ट होने लगता है तो बहुत कम फीडबैक आते हैं और बहुत कम लोग ही जुड़े रहते हैं, तो हम जो भी लोग अभी सुन रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कृपया पूरे प्रोग्राम को सुने, और इतना आनंददायक प्रोग्राम मिलता कहाँ है।
0: धन्यवाद देते हैं आपके इस सोच के लिए। अगला जो डिमांड है वो खुशबू जी का है, झुमका चांदी दा, एंजॉय कीजिए इस गाने को, अच्छा लगता है ये गाना।

0: अच्छी बात है, झुमका चांदी तो अभी पहन लीजिए, कोई बात नहीं है फिलहाल, क्योंकि सोना महंगा हो गया है ना। और जैसे कि मैं 10 बजे तो खाना खाने जाता हूँ, फिर लौट के दुकान पर ही वापस आना होता है, इसलिए मैं कमेंट नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैं सुनता रहूँ जी। कोई बात नहीं भैया, सुनते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। और काजल झका जी इतने गाना बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और ये प्रोडक्शन लेते हैं,
1: ये गाना तो काफ़ी मतलब ये आरंभिक होना चाहिए था इस गाने को। जैसे एक गाना है कि मैं करूंगा प्यार तुमसे रफ्ता रफ्ता, उसी गाने को ये याद दिला रहा है ये गाना। ये भी गाना मस्त सॉन्ग है
0: जी, जी
1: बहुत अच्छा लगा।
0: धन्यवाद देते हैं। और दीपक कुमार गायकवाड़ जी क्या कहते हैं?
2: अमन जी, जैसे ही रात होती है गाने सुनने का और मज़ा आता है, और सुनने वाले शायद और बढ़ जाते हैं, क्योंकि समय कम हो रहता है, इस कारण शायद फीडबैक कम शामिल होते होंगे। बाकी प्रोग्राम तो सभी लोग पूरा सुनते हैं। मैं दीपक गायकवाड़ सिवनी मालवा से।
0: धन्यवाद देते हैं आपका भी। और गजानन जी लिखते हैं ये खुशबू जी के पसंद झुमका चांदी था, मजा आ गया सुन के, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हुकुम चंद जागीर जी लिखते हैं कि नाइस सॉन्ग है, थैंक यू सो मच। और अच्छा जी हाँ, अभी तो अभी बहुत महंगा हो गया है ना। और इन खुशबू जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए। अगला जो डिमांड है वो सुनीता गोप जी का है, और सुनीता गोप जी इंजॉय कीजिए इस गाने को।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं है। फिलहाल यहाँ पे गजानंद जी लिखते हैं कि सुनीता गोप जी की डिमांड बहुत ही प्यारी लगी है। और कुंता जी लिखते हैं कि ये खुशबू जी की डिमांड और सुनीता गोप जी की डिमांड बहुत ही प्यारी है। धन्यवाद देते हैं। अगला जो डिमांड है बबीता जी की, बबीता जी इंजॉय कीजिए इस अपने गाने को।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे। सिपाबेन जी आपने मेरा गाना प्ले कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और जिसने दोस्तों को डायरेक्ट किया उनका भी धन्यवाद। सुनीता गोपी जी सिंह अमन जी बहुत बहुत शुक्रिया आपने मेरा भी गाना प्ले कर दिया है। गजानंद जी सिंह की बबीता भान जी के पसंद का गाना मुझे बहुत ही पसंद आया है और ये फीडबैक सुन लेते हैं।
1: चुनरी लहराई तो दिल धक धक करता है, दिल धक धक करने से मुझको कुछ होता है। मैं तेरे मिलने से पहले दीवाना नहीं था। वैसे कल जन्माष्टमी है तो जन्माष्टमी की सबको अग्रिम शुभकामनाएं। और कल राधा रानी का चुनरी लहराएगा और उस लहराती हुई चुनरी के साथ श्री कृष्ण जी अपना मनोरंजन करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सॉन्ग प्ले करने के लिए।
0: अगला डिमांड।
2: अस्सलाम वालेकुम भाईजान। तो आज थीम चॉइस चल रहा है, थीम चॉइस में है चूड़ियाँ। चूड़ियाँ से ये सॉन्ग है चूड़ियाँ ओ चूड़ियाँ, फिल्म है आजमाइश। इस गाने में शामिल कर रहे हैं आपको और आपकी सपनों की रानी सुंदरता की मूरत जी और रेडियो हॉट स्टार एंड गाना के सभी आरजे और सभी दोस्त। MD फैज आलम हैदराबाद से।

0: बिल्कुल अगला डिमांड में प्ले करूंगा। और यहाँ पे मनीषा जी लिखते हैं थैंक यू सो मच अमन जी मेरा गाना सुनवाने के लिए। और ये फीडबैक यहाँ पे अनिल कश्यप जी लिखते हैं गाना बहुत ही प्यारा है। तो ऐसा मैं लोगों ने फीडबैक को यहाँ पे कम किया। अगला जो गाना मैं प्ले करने वाला हूँ दीपक कुमार गायकवाड़ जी का, क्या कहते हैं क्या सुनवाते हैं सुनते हैं।
1: अमन जी नमस्कार,
0: नमस्कार।
1: कैसे हैं आप?
0: बहुत अच्छे, आप बताइए आप कैसे
1: हैं। थीम चॉइस में आज मेरा जो गाना है, जो कि कल जन्माष्टमी है, तो उस पर एक भक्ति संगीत सुना दीजिए। और गाने के बोल हैं, मनिहारी का भेष बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया, मनिहारी का भेष बनाया श्याम चूड़ी। आया मेरी दीपक गायकवाड़ सीनी मालवा से, जय श्री कृष्ण।

इस गाने के बाद वो लाल दुपट्टे वाली फिर यानी फंसी लगा दो दुपट्टा से, उसके बाद से देखते हैं कौन सा, क्योंकि समय कम है और फरमाइश ज्यादा है। और आज मैं किनको कॉल लगाने वाला हूँ, जो भी आज फर्स्ट नंबर पे होंगे मैं उन्हीं को कॉल लगा लूंगा, लौट ही नहीं निकलूंगा।

0: बिल्कुल। और गजानन जी लिखते हैं कि दीपक कुमार गायकवाड़ जी की पसंद बहुत अच्छी लगी है, और दीपक कुमार गायकवाड़ जी क्या कहते हैं, इनकी भी सुन लेते हैं।
1: अमन जी, आपने मेरा गाना प्ले किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके जो गाना बजाने की जो सेटिंग है वो बहुत ही बढ़िया है, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप समय पर गाना बजाते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। मैं दीपक गायकवाड़ सिवनी मालवा से।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और हुकुम चंद जी लिखते हैं कि रेडियो हॉट एट अपवा इन सभी की फरमाइश को यानी कि पूरा होता है, बहुत बहुत अच्छा लगता है, धन्यवाद देते हैं, सुनकर अच्छा लगा ये भी गाना। और अनिल कश्यप जी लिखते हैं भक्ति सॉन्ग भी अच्छा लगा। अगला जो डिमांड है मैं प्ले करने वाला हूँ, ये सुनील कुमार जी का है और इनके साथ साथ निशांत राय भोले जी भी है।
2: अमन भैया नमस्कार, शुभ संध्या, प्रणाम। मैं सुनील कुमार बांका बिहार से और जुड़ गया हूँ आपके प्रोग्राम से। आज की प्रोग्राम में मेरी फरमाइश रहेगी, फिल्म का नाम है आंखें और गाने के बोल हैं लाल और लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता। इस गाने को पहले तो ये गाना आपको डेडिकेट, आपकी सुंदरता की मूरत को। और वंशिका जी हैं, आकांक्षा जी हैं, सोनी जी हैं और रत्ना जी हैं, IMS परमार जी हैं, सोनू गौतम परमा, प्रिंस पासवान जी और मुक्तिनाथ जी हैं, परवेज अहमद जी हैं और परवेज अहमद जी हैं, इनके अलावा अरुण मंडल जी हैं, एम ताहिर जी हैं, निकला जी हैं और रेडियो हॉट स्टार सुनने वाले सभी दोस्तों को मेरा गाना डेडिकेट रहेगा, धन्यवाद।
0: ओके, एंजॉय कीजिए।

0: नाम तो
1: और यहाँ पे शिल्पा बहन जी लिखते हैं कि श्याम चोरी बेचने आया गाना मुझे अच्छा लगा है, और कुंता जी लिखते हैं वेरी नाइस डिमांड है सुनील जी, थैंक यू सो मच। और आमना खान जी लिखते हैं कि जी ये भी गाना बहुत ही अच्छा लगा है, और जी बिल्कुल मैं तो निकलने वाला हूँ अब। और गजानंद जी लिखते हैं कि वो लाल तो पटे वाली वाला गाना अच्छा लगा है, और ये फीडबैक सुन लेते हैं।
2: रात के अंधेरे में दुपट्टा दिखाई ही नहीं दिया कि लाल है या काला है या हरा है, समझ में नहीं आया, बट गाना बहुत अच्छा है।
1: ओके जी, इसी बात पर अगला जो डिमांड है यानी कि ये है मतलब मृणालिनी जी की, और मृणालिनी जी एंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: ओके तो कॉल लगाते हैं आज को अनिल कश्यप जी को। बहुत बहुत आपका वेलकम है एंड बधाई हो अनिल कश्यप जी। हेलो
1: जी, नमस्ते।
0: नमस्ते, कैसे हैं भाई?
1: बस बढ़िया, अपना बताइए।
0: एकदम हम झकास बिंदास फर्स्ट क्लास मजे में, चकाचक है बस, यानी थोड़ी सी फीवर है मुझे और कुछ नहीं।
1: वो तो वायरल है, चलिए दुआ करेंगे कि जल्दी से ठीक।
0: वो तो होना ही है। एक्चुअली क्या है ना कि मैं यानी पानी में भींग भींग जा रहा हूँ, यानी बारिश वाले पानी में, इसलिए ऐसा हो जा रहा है और नींद भी कम्प्लीट नहीं हो पा रही है। हेलो, आवाज नहीं आ रही है आपकी, नेटवर्क शायद कट गया है। दोबारा कॉल लगाता हूँ आपको।

0: आपकी आवाज नहीं आ रही थी इसलिए दोबारा कॉल किया मैंने।
1: जी अब आ रही है।
0: कोई बात नहीं, बताइए आज क्या सुनना पसंद करेंगे।
1: आज आप बीच में प्रोग्राम में हमको बोले भी थे कि आप बहुत टूटे हुए इंसान हैं।
0: तो
1: मुझे एक गाना है अनूप जलोटा साहब की आवाज में, और रात का समय है तो वही सुना दीजिए। पत्थर बना दिया मुझे, रोने नहीं दिया।
0: पत्थर बना दिया मुझे, रोने नहीं दिया। अच्छा, ऐसा भी कोई गाना है। अनूप जलोटा की आवाज में है।
1: जी जी
0: मिल जाए मुझे गाना, आई होप मिल जाएगा, ढूंढता हूँ मैं।
1: मिल जाएगा।
0: हाँ, फिल्म का नाम है शोहरत।
1: फिल्म का नाम मुझे, बट गाना ही अच्छा लगता है।
0: ओके जी, ठीक है, तो हम आपको सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गाना, एंजॉय कीजिए।
1: थैंक यू।
0: ओके,
1: थैंक यू सर,
0: धन्यवाद।

गाना बहुत ही प्यारा है और मैं इसे पूरा बजा के जा रहा हूँ। और कल सुबह 9 बजे स्पेशल रिक्वेस्ट अभी सुनना न भूले और सुनते रहे रेडियो हॉट चार्ज जो दीवाना बना दे। और इसी गाने के साथ मुझे डीजे प्रोग्राम से निकलने की इजाजत। मिलते हैं फिर कल शाम 6 या 6:30 बजे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट।

0: ये कमबख्त याद ही तो तबाह कर देती है डॉक्टर साहब। उस गली से गुजर हुआ नहीं कि पलटना मुश्किल हो जाता।
1: फिर तो जरूर कोई ऐसी याद होगी जिसका वास्ता आपके दिल से होगा।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 12 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 2 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 4 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: हो चकाचक हिरलो पान चबा
1: आओ
0: आहा।

के लाले बोला मुझको कोई बचा ले। चूहा आगे पीछे बिल्ली पीछे बिल्ली चूहा आगे चूहा आगे पीछे बिल्ली चूहा आगे पीछे बिल्ली चूहा आगे आ

दिन बीवी बन गई भोली, कुंडी खोली हंस के बोली, जाने तमन्ना अंदर आओ, पहले तो कुछ खाओ आओ, फिर बिस्तर पे होंगी बातें, बड़े प्यार से कटेंगी रातें। शौहर चौंका, भूले से मैं, ये किसके घर आ गया यार, मेरी बीवी मुझे कभी भी दे नहीं सकती इतना प्यार।

माफ कीजिए, मेरे साथ जरा इंसाफ कीजिए, मुझको अपने घर जाना है वरना बीवी फिर मारेगी। उस दिन बीवी होश में आई, बंद हो गई सारी लड़ाई, नफरत हारी उल्फत जीती, लुटी खुशी फिर लौट के आई। अरे नफरत हारी उल्फत जीती लुटी खुशी पे।